अल्लाह के महबूब यानी मुर्सिल आजम शाफ़ाए महशर साकी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मैं शहर इल्म हूं, अली उसका दरवाजा। मदीने से हिजरत रसूल की रात, उनकी शुजात की गवाह, फर्श काबा जिनका मोलिद, चौथे खलीफा आजम जिन्हें शाह मर्दा कहा गया, जिन्हें शेर यजदा कहा गया, मुश्किलों में जिसे पुकारें वो एक नाम।

एक बार असुर राज भस्मासुर भोले शिव शंकर की भक्ति करके भोले भंडारी को प्रसन्न कर लेते हैं और भोलेनाथ उनको दर्शन देते हैं, वरदान मांगने के लिए कहते हैं। लेकिन भस्मासुर उनके साथ माँ पार्वती को देखकर मोहित हो जाते हैं, लेकिन उनको कैसे मांगे ये विचार करके एक वरदान मांगते हैं कि जिस किसी के सिर पर मैं हाथ रखूं वो वहीं भस्म हो जाए। भोले भंडारी तथास्तु कहकर चलने लगते हैं तो भस्मासुर उनके पीछे शिव पर हाथ रखकर

कि किसी और का क्यों होना। घर ले जा प्यार का थैला, आई एम फ्लाइंग सोलो लैला। हिलक गाना, हिलक धमाका बीट गाना, हियर से बाय उजाला रेडियो। दिस इज सेम फन इप्सिता इन दिस सिंगल सॉन्ग रिलीज गाना। Geniet waar je bent en geniet samen met Ujala Radio van de heerlijke gevarieerde Ghana vandaag. Uit de film Yara, de stem van Sean Anki Tewari en Siddharth Pandit in deze groep Surat Ghana, organica naam he Hardefaak.

और रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 फ्रागें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

कुदरत का करिश्मा, एक दूसरे से है मिलना, दुनिया के जरसमी पर किस्मत को है आसमाना, ये प्रेम का जहां है हरगिज ना भूल जाना, आपस के मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। हमारे सभी सुनने वाले को हर को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे, आज शुक्रवार 9 तारीख अक्टूबर का प्रोग्राम। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी वाहो, आप रिको हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो इनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप रिकी ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। हमारे प्यारे सुनने वालों, करीबन 10 मिनट व्यतीत हो चुकल है 9:03 ओफर नहीं खा। चाहे जहां पर आप लोग हमें सुनते होंगे, सुनते ही जाइए, दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं। मैं हूं सुबह से गोविंद और जहां तक मेरी आवाज पहुंची वहां तक हम आप सभी को बहुत ही प्यार से दुलार से स्वागत कर रहा हूँ आज सुबह का प्रोग्राम में। खुद मोर खालमा वेलकम, यू आर उजाला रेडियो यार। उजाला रेडियो का दफ्तर भी आज सुबह में 10 बजे से खोले जाएंगे शाम में 3 बजे तक, जहां का फोन का नंबर है 9204909907 पर आप लोग तार कर सके हैं। पर मांदा तो तुम्हें साथ रख पानी मोरखो द्रीवर इन द मिदाख, या तो जाइए उजाला के वेबसाइट पर www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक जानकारी आपको मिलेगा। हमारे प्यारे सुनने वालों, चलिए प्रोग्राम को आरंभ करते एक सुंदर सा लक्ष्मी चालीसा जो हम आप लोग को सुनाने वाले हैं। और आने वाले सोमवार से नवरात्रि है, आप सभी को ये नवरात्रि शुभकामना आप हरिक को।

और इस तरह से लक्ष्मी चालीसा जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने अनुराधा पौडवाल जी के आवाज में, हमारे प्यारे सुनौलो यात्रा आने वाले सोमवार से नवरात्रि जप है, तो ये नवरात्रि पर्व जो है तो आप सभी सुनने वालों को अभी से नवरात्रि बधाइयां, शुभकामना आप सभी सुनने वालों को। शुक्रवार का प्रोग्राम इस यू आर उजाला रेडियो यार।

और वीकेंडों में चाहे जो जी आप लोग करिए, तू जाने है चीजों प्यार से एंड दुलार से, वरना ना करिए। ये बात हम तो लोग से बोली लो और हमारे प्यारे सुनने वालों, चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो आप लोग सुनेंगे, और देखा जाए चंद्र भी प्रोग्राम को बरकर सुने खुद मूर्ख। यू आर उजाला रेडियो यार।

नाम के साथ तुम्हारा मांग लिया संसार, मोहम्मद रफी ना शाहजी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। देखा जी भाई राकेश दलहक में भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुदा मोरख। और चलिए यार गाना तुम्हारे नाम का देता हूँ,

इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने अरिजीत सिंह जी के आवाज में तुझको, फिल्म का नाम कॉकटेल यार, एंड स्टेशन है युवार उजाला रेडियो। आज शुक्रवार का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, देखा जाए तो करीबन 9:30 का वक्त है, प्रसिस हाफ तीन, और अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए एस के देश में लीना रामेश्वर भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद अमरख। अभी से आप सभी सुनने वालों को शुभ वीकेंड, फाइन वीकेंड तू खबर हमारी तरफ से। वेरवा उतना विशाल ना बा, ठंडा ठंडा है यार, हमू के ठंडा लगे यार।

तुम क्या मिले आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। हमारे प्यारे सुनेल उजाला रेडियो का प्रोग्राम है, करीबन 20 मिनट बाकी रहा 10 बजे में। तुरंत खमित फोर तीन और क्या पकाओ कोई आज यार, वीकेंड तो शुरू हो गया है, तो फ्राइडे वत खाओ को तो लोग सोच भले तो लोग जाने की तो लोग आज का पकाइए वहाँ तो वेरवा के मुताबिक चाहे सोचे कि क्या बनाओ कोई का खाओ कोई आज वहाँ ठंडा ठंडा में चटक मटक चाहे खाए के या लेकर सवेरे सवेरे तो लोग से पूछ लो कि का पकाओ खोई का खाओ खोई। यही में मजा है।

बल यार तू ही मेरी मोहब्बत तू ही मेरी दुआ। आओ इस तरह से अरिजीत सिंह जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। उजाला रेडियो का प्रोग्राम और नतुलक ऐप अंदर आ चुका है कि का बना कोई आज राकेश दरहाक से पठाई से बोले वो बनाएगा इवेरवा में तीता तीता ब्राफू बांधुकर भाई सुरनाम साहिल फकांसी से वेलकम यार एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं। अगर आप बैठ करके ऑन बैठ करते होंगे चाय या तो कॉफी या तो खेम्बर तेई बनाई कर बैठ कर पीते होंगे तो स्वादिष्ट ऑन बैठ कीजिए ना ये ठंडा ठंडा वेरवा में जबल आई बॉय।

वेल यार, तू मेरी दुआ तू मेरी हर शाम। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। करीबन 8 मिनट बाकी रहा 10 बजने में अख नितिन फुर्तीन और आप लोग उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे। और अगर आप लोग हमें ऐप करना चाहेंगे तो यू आर का व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9 3 3 9 0 0 पर, चाहे जहां पर आप लोग बैठ करके सुनते होंगे। अगर आप ऐप करना चाहेंगे 9 3 3 0 0 पर। अपने दिल व

वेल यार मेरी दुनिया तू ही तू सिर्फ तू ही तू। आयुष सरोज से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे और हमारे प्यारे सुने वो लोग करीबन दो मिनट बाकी रहा दस बजे में तो मिनट तो फुर्तीन खुद मोर खाल माओ एंड देखा जाए ना द ब्रेक ना द रिक्लाम फिर प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और आप लोग चाहे यहाँ पर रहिए बस यार सुनते ही जाइए 12 बजे तक दिन में आप लोग के साथ हम देने वाले हैं चाहे जो ऊंची आप लोग करेंगे चाहे जहां पर आप हमें सुनते होंगे इस ठंडा ठंडा मौसम में ठंडा ठंडा हवा चले है वह हमें बाहर नमन कर जाए दोस्तों हमारे साथ देते रहना

दीदार पहली दफा हुआ। हम तुम लोग से वादा करे रही कि ब्रेक के उस पार रिक्लामा की बात, ये गाना हम तुम लोग के पूरा सुना देंगे। हे लमा फुल एक्ट।

0: दिल का दीदार उम्र भर रहे तेरे साथ यार। अब बोले अभी तक तुम्हारे हाथ का गर्म एहसास है,
1: तू ही मेरा करार,
0: तू ही मेरा करार है जान। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, वेल यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए फैंस फोल्डर में एमी प्रोग्राम को बारीक सुने तो इस गाना को मांग किया है, तो चलिए गाना हम आपके नाम कर देता हूँ फैंस फोल्डर में बैठ करके प्रोग्राम को सुना है। खुद मोरखा

तकलीफ बहुत है जिंदगी में, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, आज शुक्रवार 9 तारीख के अक्टूबर का प्रोग्राम है, फ्राइडे बैना वीकेंड है यार। और अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए तिलबरुक शहर में सुनीता भी प्रोग्राम प्यार के साथ बैठ कर सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम। और गाना पेश है इस तरह से,

आजा रे जान चान बोले आजा रे। हरिहरन एन कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, ये दिल की बात है यार, आजा रे जान। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। अब की बार चलिए प्रोग्राम में तो कुमार शानू जी की आवाज में एक गनवा सुन। ये हुए विशाल गाना है यार, जान की कसम।

वेल यार, दिल भूल नहीं सकता तुम्हें, तुम्हें याद करके रोएगा ये दिल। कुमार शानू जी के आवाज में गाना जी प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। हमारे प्यारे सुने वालों, अब की बार ये गाना आप लोग सुनेंगे जगजीत सिंह एंड अलका जी।

0: जिनको किस्मत हमारी,
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी,
2: कुछ
1: जिसे मिल गई है।
2: जगजीत सिंह एंड अलका याग्निक जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, किसका चेहरा देखूं यार, यू आर उजाला रेडियो अन्नप की बार, पंकज दास एंड अलका याग्निक जी।

बल यार तुझे देख के धड़कता है ये दिल मेरी जान, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और वो भी खास करके पंकज उदास एंड अलका यांगनिक जी के आवाज में, एंड यू आर उजाला रेडियो। करीबन 17 मिनट बाकी रहा 11 बजे में, टेमुआ कितना हल्दी उड़े है।

वेल यार तुम्ही से है जाने जाना ये बेखुदी ये आशिकी वेल मेरी जान। और इस तरह से सोनू निगम जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है बैना बैना बैना वीकेंड यार। और देखा जाए फैसल प्रोग्राम को सुने है भाई फैसल गुड मॉर्निंग यार चलन दे यार आई बॉय।

0: रे मुड़िया पे नाचे है जबल आई बॉय यू आर उजाला रेडियो छेदी के बाद उसमें गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे हमारे प्यारे सुनने वालों उजाला रेडियो है
1: धड़कन में
0: आई बॉय

0: अच्छा लगा।
1: रहते हो रहते हो
2: तुम दिल की धड़कन में रहते हो, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और खास करके तो अभिजीत एन का याग्निक जी के आवाज़ में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। हमारे प्यारे सुने वो बैना बैना बैना यार, 11 बजने वाले हैं बैना बैना एलफ्यूर, और नाद ब्रेक नाद रखलाम यार द हाँ लास्ट घंटवा नादर रखला मनादर।

सही जुगाड़ उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों करीबन करीबन 7 मिनट व्यतीत हो चुका है 11:00 सेवन मिनटन ओफर अलाफ आउट एक जय आनंद मंगरू भी हो दोरम शहर में प्रोग्राम

जूली आई लव यू। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे हमारे प्यारे सुनने वालों, अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए दीमन शहर में फौसिया भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने खुद मोर्ख। और ये गाना चलिए तुम्हारे नाम कर देता हूँ।

वेल यार तेरा करार है एन मोहब्बते हो गई। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने एम्स हाफन में प्रोग्राम को भी बैठ करके सुने हैं, कैसी काम करे है एंड यू आर भी सुने हैं एंड देन दिस स्पेशल फॉर यू वेलकम।

वेल यार, मुझ पे छाया है तेरा फितूर। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, और देखा जाए रमेश एंड रेशमा भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने। खुद मोर खालमाल जुआर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है यार। तैतवा देख कैसे उड़ गए बैना दोन जवेल आई बॉय। और बाहर पानी बरसे, चिसिर मिसिर खूब बरसे है, मंगरे गले लग जाए, मैं क्या करिए।

राहुल वेल यार, तेरी आंखों में हम खोए जा रहे हैं एंड तेरे इश्क में हम पागल हुए जा रहे हैं। आई बॉय, इतना मोई मोई अल्फाज और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। हमारे प्यारे सुने वालों, देखा जाए तो बैना बैना हल्फ तो हल्फ और तुम लोग सोच भले कि तुम लोग का पकई है बेर बेर पूछ लो तुम लोग के साथ बोलत हुई ये लोडवा ना चुप रह सके का लोडवा के ही काम है तुम लोग के पूछे कि तुम लोग का बनाइए का तुम लोग खाइए यार। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो मानो भी प्रोग्राम को बड़ी सुने हो दौर शहर में और अपने सुनु शक्ल गाना को मांग किए हैं इन लोगों के बतियाना सुनिए अच्छा।

वेल यार, तेरी नजर का नशा अब ले उतरता नहीं यार, कैसे उतरेगा। एंड किरण दत्त इस बार चाहे ना समझे तो ये मार ये मुतत फुलन दत्त इस बार। थैंक यू वेल एंड यू आर उजाला रेडियो।

सुने वालों, तेरी नजर का नजा बोले उतरता नहीं, बोले जन नशा बोले चढ़ जाए तो उतरे के हाल ना जाने यार। हम ना बताए से क्यों मार हो सकत हुई, अल्फाज जितना मोई है तेरी नजर का नजा। नशा नशा बहुत खराब चीज है यार, प्यार के नशा।

वल यार बेफना तेरी मोहब्बत है और तेरी चाहत है। अवसरों से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एन उजाला रेडियो का प्रोग्राम। हमारे प्यारे सुनने वालों, विकेंतवा है, विकेंतवा में चलन दे जो भी आप लोग करिए। मोई कभी प्रोग्राम को सुने बेनिंग में एन राजेश बनारसी यूथ रैक शहर में काम करे हैं।

Jenna, yaar. Yabal. It's you all. Ujala Radio. Amsterdam शहर से प्रोग्राम को मना रहे आप सभी के लिए

सूरज मुखी सा चेहरा है तेरा, बोले आ जाना प्यार। वेल यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुने वालों। करीबन 20 मिनट बाकी रहा 12 बजे में, तुम तक मिनट फॉर 12 फैटस बैना बैना बैना वीकेंड यार। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, इवेरवा में नतुल कुछ कुछ होता है यार।

0: क्या करूं, हाय यार कुछ कुछ होता है, ना तुल्लक यार कुछ कुछ होता है। एंड राइसा के लिए गाना पेश है, नमस पापा मामा भाई भौजाई विनेश यवल यवल राइसा
1: हीरो जैसे नाच के दिखाओ।
0: एक शुभ दिन

0: हमारे प्यारे सुनने वालों, धीरे धीरे हम आप लोग सब इजाजत चाहेंगे और यही आशा कि आज का प्रोग्राम जिस तरह से हमने बनाए सजाए आप सभी सुनने वालों को भी पसंद आए हुए होंगे। और देखा जाए करीबन 12 बजने वाले, 5 मिनट बाकी है 12 बजने में। वेल टेमो इतना हल्दी दोन हो गए मजा का कर रखो यार और तुलक अपन वीकेंड जो है तुलक मोई से मनाइए, मोई से बिताइए, मोई से खाइए, मोई से पिए, मोई से रहिए। और ये बेरवा में हम नानी का करे थोड़ी पानी बरसे है।
1: आज पिया तुरही घर ही पाटे खटको खटिया को नाही तड़के।
0: हमारे प्यारे सुनने वालों, अब से लेकर करीबन 9 बजे से लेकर अब तक जो प्रोग्राम हमने बनाए सजाए आप लोगों के लिए, आशा की आज का प्रोग्राम भी आप सभी सुनने वालों को पसंद भी आए हुए होंगे। हमारा साथ देने के लिए, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अपना शुक्रवार का दिन रात्रि तो लोग मोई से बिताए।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नीलॉन्ग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। Staat 40 jaar, niet 10.

और कुछ हाँ कुछ याद आने लगा, कुछ बात जाने लगा, तो फिर इसमें दिल क्या करे, फिल्म का नाम भी दिल क्या करे, उदित नारायण और अलका याग्निक से आप गीत को सुने, और इन्हीं दोनों से एक और गीत, बहुत ही सुंदर गीत।

0: जानास सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया।
1: वेलकम टू उजाला रेडियो।

मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर हॉन ट्यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

यू आर लिसनिंग टू उजाला रेडियो। शरारत का नाम सुनकर ही हल्की सी मुस्कान आ जाती है। कोई छोटी छेड़छाड़, कोई बात कहकर चुप हो जाना, कभी इतना ही काफी होता है।

ट्यून्ड इन टू उजाला रेडियो। अब नाम में ही एक ठुमका है, कुछ शब्द बोलते ही जैसे अपनी छोटी सी अदा लेकर आते हैं। सुनिए ठुमकेश्वरी।

दिस इज उजाला रेडियो योर बॉलीवुड स्टेशन। अगला गीत फिल्म के GF चैप्टर 1 से है। अब सुनिए गली गली।

योर बॉलीवुड कंपनी इज उजाला रेडियो। मेरे महबूब में किसी अपने को पुकारने की नरमी है, नाम लेने की जगह ऐसा संबोधन, और बात थोड़ी और निजी हो जाती है। कितना प्यारा अंदाज है।

उजाला रेडियो इज योर डेस्टिनेशन फॉर बॉलीवुड म्यूजिक। पिछले गीत के बाद अब फिल्म वॉर 2 की ओर चलते हैं। आपके लिए आवन जावन।

स्टेशन कीपिंग यू कंपनी इज उजाला रेडियो। रंग दे लाल ओए ओए, रंग भरने का कितना सीधा और खुला ख्याल है। कभी थोड़ी सी रंगत ही किसी साधारण चीज को खास बना देती है।

enjoying Bollywood music on Ujala Radio. किसी नजर का असर शब्दों से पहले भी महसूस हो सकता है। भीड़ में एक पल के लिए आंखें मिलें और वही छोटा सा पल याद रह जाए। उस मुलाकात में कुछ कहा नहीं गया, फिर भी कुछ ठहर गया। अब सुनिए आंखों से तूने 2.0।

तू जाना सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए सच्चे फिल्म में बताओ खैर उजाला रेडियो पर अब आप सुनिए ये शानदार सिनेमा पेश किया जा रहा है आपके लिए

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, के कर साथ तू ओतो में घूमे है, और के कर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

अफसोस करोगे, अफसोस करोगे, जरूर अफसोस करोगे। स्टेविन बेन की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं। जोहेब हसन, जोहेब हसन।

जिंदगी से न जाना, क्या क्या गीत है। उजाला रेडियो पर इंफॉर्मेशन, जानकारी के लिए उजाला.nl।

नाना नानी दादा दादी काका काकी मामा मामी फुआ फुफा बहन और ए भाई तो भी सुने है तो उजाला रेडियो।

एंड गर्ल गर्ल गर्ल बन गई। यो यो हो ही था यो यो हनी सिंह नेहा कक्कर एंड सुखबीर, इन लोगों से आप सुने एंड ये उजाला रेडियो है टॉक।

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net उजाला पेश करे हैं उजाला दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जोंदा 1 नवंबर इन मेरवार मैट संजय जोधा मौसमी रॉय इंद्रनील रॉय रविंद्र सिंह बेदी एंड म्यूजिकल बखलाइनी इस हाल फॉर्म आविष्कार ऑर्केस्ट्रा प्रेजेंटेशन जय चंद्रिका सिंह एंड सुधीर ननन जोंदा 1 नवंबर टिकट वक्त पे खरीद लेना और प्रोग्राम शुरू होने वाला है फ्रॉम 2:30 रात 8:30 Fakkel op toch gezet, hebben we een Georges concert doorgaat hier. Tickets vanaf €15. Wacht bij Gerilina via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisez

उजान रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजान रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजान रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजान रेडियो